रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्कार वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों हर इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम और लो हाजिर है जॉक्स लेकर शो व्हाट्स अप
1: यो दिस नेक्स्ट वन इज रियली स्पेशल फॉर मी एंड आई थिंक इट्स गोना बी रियली स्पेशल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बट हियर मी आउट हियर मी आउट हियर मी आउट हियर मी आउट एवर सिंस आई बिल्ट दिस वेयरहाउस आईव हैड अ ड्रीम that a bunch of people get in here together and they sing qawwali at the top of their hearts out. And what's going to make this really special is that just when you think you're tired, you keep the clapping going with everybody else. A qawwali ensemble is really built on the energy of everybody that's in the room clapping together. You with me? And right to the drop, we're gonna do this together, all the way.

0: to Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट वेदर अपडेट
3: जी आज के मौसम का हाल क्या होगा कतई तेज तरार धूप या फुसकी बेडाला
2: रेडियो चैनल रेडियो रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: मेरे 90.4 एफएम पर आज का वेदर अपडेट क्या कहता है आइए बताते हैं। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 17, दैट मींस ठंड होगी हसीन, सो एक्स्ट्रा लेयर्स साथ जरूर रखें। वैसे कल से मौसम जो है वापस 20 पर आएगा, आज 17 है कल 20 बता रहा है हमारा ऑफिशियल वेदर ऐप। वही अगर हम बात करें तो गरज बरसात की संभावना है। इट्स एन अवरकास्ट फॉर टुडे।
2: वेदर अपडेट
3: बीच बीच में हल्का फुल्का सूरज दिख जाएगा, लेकिन उससे आपको कोई भी होप नहीं रखनी है क्योंकि मौसम की जो बारिश की तोप है चलती रहेगी।
2: वेदर अपडेट
3: ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और जारी रहेगा व्हाट्सएप शो भी। तो शो का हिस्सा बनने के लिए 8999-04904 इज द नंबर।
2: रेडियो रेडियो चैनल
3: अभी के लिए यूवी इंडेक्स वेरी वीक पर ह्यूमिडिटी 83% पर है, विंड स्पीड है

0: जीरो विजिबिलिटी है 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:37 पर, आज का सनसेट होगा 5:58 पर।
1: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इसका नंबर। एक्सक्यूज मी फोन चिकन, व्हाट्सएप चिकन, बेच कर टेक्स्ट मैसेज। मैं हूँ जॉक्स, मजदार शो व्हाट्सएप से रहक धड़काते रहो।

0: Chiba, please try to understand me, yeah.
1: Excuse me.
0: Kya re?
1: Main

90.4 FM enjoy कर रहे हैं आप मस्तार शो WhatsApp दोस्तों याद रखिए अपने follow share subscribe करना है रेडियो चनार को Facebook YouTube Instagram X पर साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में मजीद जानकारी के लिए प्लीज लॉग इन टू www.radiochanar.com मैं हूं जॉक्सूस हर दिल की धड़कन रेडियो चनार सिटी हक मेरे यार दरगाह तेरा

का वेलकम है हजरत। भूल के गोले वो बम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी की जानी, वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। जी हाँ, एक इन्फ्लुएंसर जो कि है तमिलनाडु से, जाने माने शख्स जिन्होंने इन्फ्लुएंसर होने के बाद ये किया कि लोगों को कहा भैया जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं मुझे दिवाली स्वीट्स भेजे, अपना एड्रेस शेयर किया और शेयर किया अपना फोन नंबर। अब लोगों ने भर भर के प्यार भेजा, गिफ्ट्स वर्थ लैक्स करोड़, लेकिन सब पे लिखा था COD, कैश ऑन डिलीवरी। और जब ये डिलीवर होने लगे तो इन्फ्लुएंसर को लाइव आकर लोगों को कहना पड़ा ऐसा मत करो, टीवी फ्रिज LCDs, महंगे फोन, सब COD, सब कैश ऑन डिलीवरी। और उसके अलावा T90S टैंक जो 70 करोड़ का है वो भी ऑर्डर कर दिया लोगों ने इनके पते पर। इतना तंग होने के बावजूद इन्फ्लुएंसर को शहर छोड़कर भागना पड़ा और नंबर भी चेंज करना पड़ा। जी हाँ, ऐसा प्यार किसी को कैसे पच सकता है भैया, वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, सीधे धड़काते रहो।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो का सेगमेंट। जी हाँ, कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, Where wolves wail, music speaks. What is frequency radio channel? Stay hooked, dhadkate raho.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Zeus. Zeus. Zeus.

और दिल की धड़कन धड़का रहे हैं आप और सुन रहे हैं आप रेडियो चैनल 90.4 FM। जी हाँ, और रेडियो चैनल पर मैं हूँ आपके साथ ही जॉक्सियस मजदार शो। व्हाट्सअप व्हाट्सअप शो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर, और आपने भी साथ निभाना है। जी हाँ, इस सफर को जारी रखने के लिए अपनी यारी आपने हम तक पहुंचानी है, अपने व्यूज इमोशंस और थॉट्स। 88999-0409-0409 नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। जी हाँ, अगर आप भी इस सवाल से जूझते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो दस्तक देता है कि फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होगा, क्या है फ्यूचर वर्ल्ड की दास्तान, आज बता रहे हैं हम आपको। व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक फ्यूचर वर्ल्ड, आप भी टॉपिक से रिलेटेड कह सकते हैं, अपने व्यूज इमोशन थॉट्स हम तक पहुंचा सकते हैं। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, सिरे हक मेरे यार धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

करते। अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल के धड़कन एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, टेक वर्ल्ड से अपडेट से लेकर बॉलीवुड की तरक्की बढ़ती खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। जरा सा इंतजार देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार सिटी हट धड़का।

0: bunch of zoos.
1: Going out.
2: Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots. Dead dogs, dead dots.
3: Dead dogs. With Archie Zeus.
4: Regional 90.4 FM show. What's up, show ka segment? Dead dogs.
2: Dead dogs, dead dots.
4: जी हाँ, टिकटॉक्स में ये बात करते हैं कि अगर आपने ना बोला तो आपको भारी पड़ सकता है। नहीं मतलब saying no is not, but अगर हम बात करें आज के दौर की तो व्हाट्सएप पर ना करना पड़ सकता है आपको भारी, क्योंकि हो सकता है आपके साथ स्कैम। नया स्कैम, नया तरीका। व्हाट्सएप पर आपको आएगी मैसेज कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है 1.5 लाख, 1,000, 50,000, कोई भी अमाउंट डेबिट होने वाला है। अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं की है तो ना से रिप्लाई करें। अब जैसे ही आप नो लिख कर भेजते हैं उस नंबर पर उस मैसेज के बदले, तो क्या होता है, एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है रेस्पॉन्ड करते ही और आपका बैंक अकाउंट छूमंतर। देखिए, पहले तो अननोन नंबर से ऐसा कुछ आए तो उसे रिस्पॉन्ड ना ही करे, थिंकिंग ऑफ दिस थिंग कि ये बैंक की तरफ से होगा। आश गोमत गोमत माश के बेटर इज कि आपने बैंक को कॉन्टैक्ट करे रादर देन रिप्लाइंग टू सच मैसेज। अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखे। और रेडियो चुनार सुनते हैं तो इस स्कैम के बारे में हो चुका है पर्दाफाश। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: bunch of zoos.
1: Going out.
2: Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs. Dead dogs, dead dogs.
3: Dead dogs. With RJ
4: Zoo. This is Radio Channel 90.4 FM show. Was a voice of show ka segment. Tech Talks.
2: Dead dogs.
4: जी हाँ, अगर आप भी एक कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके लिए है कुछ खास। जियो क्लाउड, एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका है लेकिन आपका नहीं है। व्हाट आई मीन एक्जैक्टली इज, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर मूवीज जो आपके अकाउंट में रहती है लेकिन फिजिकली आपकी बस कोई सीडी कोई डीवीडी नहीं रहती, अब ऐसा ही कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं मुकेश अंबानी। गेट इन यू जियो क्लाउड। अपने पीसी से, चाहे पीसी कितना भी पुराना हो, आप जियो क्लाउड लॉग इन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक डिजिटल कंप्यूटर मिलेगा, पूरा एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका है, जिसमें आपका डेटा है, जो आप चलाएंगे, आप अपना डेटा उसमें स्टोर करेंगे, लेकिन उस कंप्यूटर को आप फिजिकली ऑन नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स यू हैव अ कंप्यूटर नाउ बट यू डोंट ऑन अ कंप्यूटर नाउ। जब भी आप लॉग इन करेंगे आपका पीसी आपके सामने हाजिर हो जाएगा, लेकिन ये पीसी पीसी की तरह, मतलब प्रियंका चोपड़ा की तरह है, जो आपके दिल में तो रहती है लेकिन आप उसे हासिल नहीं कर सकते। अब ऐसा ही कुछ है जियो क्लाउड, और अगर आप भी रुचि रखते हैं तो जियो क्लाउड पर जाइए, लॉग इन कीजिए और अपना एक पर्सनल कंप्यूटर रख लीजिए अपने पास। बाकी जस्ट चिल डोडू, गाना जस्ट चिल, आप कहीं नहीं जाना, सुनते रहिए, धड़काते रहिए और दिल की धड़कन रेडियो चुनार, क्योंकि रेडियो चुनार सही है मेरे यार।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी आपका गाना भी चलाएंगे और उसके अलावा बातें भी करेंगे। ये है शो चुनार।

Beats with Archie Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: Jeremy.
1: Beats on repeat, show chanar. Beats I'm enjoying it only on radio chanar 90.4 FM. Day sari baatein ho rahi hai aur masti mazak wo to hota hi hai. Aur specially main kehti hoon ki aapke bagair masti mazak chhodiye har koi baat wo mumkin ho hi nahi payegi. Agar aap nahi honge, aap saath nahi denge to main hamesha kehti hoon ki aapke bagair show mein wo maza nahi aata. And trust me ki ye baat bilkul sahi hai ki aapke bagair मजा नहीं आता है. सो मजा बनाने के लिए आपका साथ होना काफी ज्यादा जरूरी है और मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और ये सफर बस यूं ही चले. और यही है कि अगर हम बातें करें और स्पेशली दिल की बात हो या कोई ऐसी बात जो आप सच में जाते हैं कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, क्या दलील छू गम्बज, तो जरूरी है कि कोई सुनने वाला होना चाहिए. सब बुशुसियती तो ही क्यों मैं तैपनी का बात नहीं. तो मैं क्या करूँगी, मैं ये सोचूंगी कि अगर आप वो बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं सिर्फ मेरे तक ही सही है तो वो भी सही है, और अगर वो बात ऐसी है कि आप दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं तो बस वो बात मैं पहुँचाऊँगी वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. तो जल्दी से अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाइए. नंबर है 8999-0494. आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं. बोलिए दिल से बोलिए, यानी छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फिर ऐसा ही हो सकता है. नहीं जी, हमें तो कोई नजर नहीं लगती. हमारी जो वाइफ एंड ड्राइव वो काफी स्मार्ट है, उन्हें पता है कि ये नजर वजन ना इससे बचने का तरीका भी पता है. बातें जो करनी है वाइट और सॉन्ग्स एंजॉय करना ओनली ऑन Hottest frequency of Kashmir Radio Channel 91.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

इस्ता। मेरे इस्ता। दिल की बात साहिल के साथ Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

beats on repeat, show to our beats up, enjoy career only on radio to 91.4 FM. And we are talking about National Highway of Jammu and Kashmir traffic. About the both sides of traffic smoothly chal raha hai, aap aaram se aa sakte ja sakte hai, Jammu se Srinagar, Srinagar se Jammu pahunch sakte hai. रोड की कंडीशन बेटर है, वेदर कंडीशन भी बेटर होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है. और ये वेदर अपडेट भी आपको बता दें कि ये इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. सो अभी के लिए बस ये है कि आप आराम से जा सकते हैं, बट ये है कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी दी गई है हमारे लिए वो उसको मुताबिक आप रखें, मद्देनज़र रखें, तो उसके बाद ही अपना आप प्लान बनाइए. और ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि सीट बेल्ट लगाना या फिर ओवरटेक करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है. यानी कि ओवरटेक करना सही नहीं है, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी आपने, क्योंकि ज़रूरी है कि हमने अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, तभी हम कह सकते हैं कि हमने कुछ सही किया. देखिए, ज़रूरी है, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं. और हर चीज़ जब सही बन जाती है वो हमारे अचनवनान जोर जहाँ. जी हाँ, सिग्नल तो प्यार का ही होता है, वो हमें यही तो सिखा रहा है कि आपकी ज़िंदगी है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है. आप भी बताइए, आपके लिए हम इतना ज़रूरी है. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल.

0: メリーが力が引けないっすね。
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।

ये यारियाँ तो रहती है और खासकर आपकी और मेरी यारी ये तो काफ़ी खास है। पर आज शो पे बात हो रही है वो स्टूडेंट्स डे के बारे में और क्या थीम है या मैसेज है उस पर भी बात होगी। बट ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स ना हो तो आगे जाकर वो इस देश का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो लीडर्स कैसे बन सकते हैं। सो क्या है वो स्टूडेंट्स डे का थीम? आज स्टूडेंट्स का दिन है तो आज स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे और अगर आप एक स्टूडेंट हैं हम तक अपनी बात पहुँचाएं। 8999-0494 कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीस कैसे बन जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑन रेडियो चुनार 91.4 FM।

0: देखिए मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, और कोई और भी है जो आपके साथ थोड़ा और रुकना चाहती है। कौन है ये लड़की?
1: टाडा, मैं हूँ आरजे असरा, और शो हंगामा शुरू होने जा रहा है, बट अभी चिनार बीट्स को कहना है टाटा बाय बाय।
0: बिल्कुल, एक लड़की अनजानी सी दीवानी सी, मेरे लिए तो नहीं है, किसी के लिए नहीं, क्योंकि सबको पता है असरा है भाई। असरा है हंगामा,
1: चाहती है
0: ड्रामा है फुल ऑन, एंड ये लड़की रुकने वाली नहीं है, बराबर आपके साथ 4 बजे तक आपको एंटरटेन करेगी, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी। सो फिलहाल ये लिए एंजॉय कीजिए इसके साथ, ये तो इतनी एक्साइटेड है ना।
1: हाँ, मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हंगामा शुरू हो रहा है, ड्रामा एंटरटेनमेंट है, बजिंग क्या है, लाइफ का फिलोसफिकल टच सब कुछ है।
0: बिल्कुल, और ये टच जो है ना, टच के साथ ही आप किस सीने के साथ वो टच वुड हो गया होगा कि नहीं भाई मजा आएगा। सो अभी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है हंगामा की, मैं तो चली, मैं कल आपसे मिलूंगी 12 बजे, ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम। दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harjit Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Hi, मैं हूँ RJ साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM.

हाय, मैं वस्त्र और आप सुन रहे हैं शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, कह तो हम लेते हैं और अभी की बात करें तो राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द रेलवे अपडेट। और आज की अपडेट यही है, जो कि लोकल सर्विसेज हैं जम्मू कश्मीर रेलवे लिंक की, बारामूला बड़गाम भानीहाल संगलदन, वो एज पर द शेड्यूल चल रही हैं और आप अवेल कर सकते हैं जो भी टाइम टेबल है, जो भी टाइमिंग्स है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन बिटवीन स्टेशन फ्रॉम द ऑफिशियल इंडियन रेलवे एप्स, दैट इज रेल वन। फिलहाल के लिए अगर म्यूजिक की बात करें तो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स तो हो गई, बट म्यूजिक की बात करें तो बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, एड फ्री म्यूजिक है। और सबसे बड़ी बात, जैसा मौसम हो रहा है तो अभी के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हमको बहुत स्लो और कुछ वो एक नेचुरल सुकून कह सकते हैं, या एक बहुत ही वो थोड़ा वो दुखी मौसम लगता है। इंसान को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, मेमोरीज याद आती हैं। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है मौसम का हमारे मूड से, बट अफेक्ट तो ज़रूर होता है। और अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, ऑटम शुरू हो रहा है और थोड़ी थोड़ी वो हल्की हल्की सी ठंड भी है। और इस ठंड में जब हमें अपने वो इमोशंस रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, आई डोंट नो द कनेक्शन बिटवीन इट, बट डेफिनेटली कुछ तो अलग होता है। और इस मौसम में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और गाने सुन रहे होते हैं, रेडियो सुन रहे होते हैं, तो हमेशा हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसे ट्रैक्स सुने जो एक्चुअली हमें कहीं और लेकर जाते हैं, हमें कहीं ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जाना बारिश के दौरान, या कुछ ऐसे ट्रैक्स सुनना जो एक्चुअली आपको उन लोगों की याद, या उन सिचुएशन सुनना उस वक्त की याद दिलाते हैं जो एक्चुअली दैट वाज लिटरली क्लोज टू यू, और आपको ये याद आता है कि उस टाइम पर लाइफ कैसी थी, क्या चल रहा है। और स्पेशली जो भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो यही कहते हैं कि अभी के टाइम पे प्लीज़ असरा कुछ ऐसा प्ले करें जो बहुत सॉफ्ट हो, जो बहुत या तो दुखी हो या तो सम लॉन्गिंग हमें वो महसूस कराए। अब आप ये बताइए कि इस मौसम में आपका कैसा मूड है। अब मेरे जैसे होंगे तो बहुत मूड स्लो लाइफ जीने का होगा, बट आप बताइए कि आपका मूड कैसा है। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं मस्टा सुन रही हूँ रेडियो 90.4 FM, प्लेइंग वन ऑफ माई फेवरेट tracks right now on repeat, Barse Naina. Main wasra sunta rahi hu radio sunar, main bas yun gayi aur yun wapas aayi.

0: मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

ले जा सांस ही तो बाकी है, इसे भी ले जा ले जा। धड़कने खाली हैं, इन्हें भी ले जा।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: सी पल्ले।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Archie Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम है हजरत, भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुनार
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के नाम।

0: करार आ जाए।
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए।
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए।
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

जवाब दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दांत कुछ नहीं कहते, मगर

दिन, चिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

कष्टी जी चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है
1: भाई, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो,
0: सौ बातों की एक बात यही है,
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।